खेरे बाहर थोड़े हमारे हमने परिणाम सब सब बैठ तो मिली तो हिलाऊं हिलाऊं से हिलाऊं।